वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी की फतेह। असा महला पहला, सुन वड्डा आखै सब कोए, के बड़ वड्डा डीठा होए, कीमत पाए ना कहया जाए, कहण वाले तेरे रहस माए।

करो चौपाई को कह चौपाई संबत 17 सहसपुण जय अर्ध सहसपुण कीन कह जय भाद्रव सुदी अष्टमी रवारा तीरस तद्र ग्रंथ सुधारा इत श्री चरित्र पख्याने त्रियं त्रित्रय मंत्री भूप संभादे 405 त्रित्र समापत मस्त शुभ मस्त अपजुन दोहरा दास जान कर दास पारो कीजा कृपा पार आप हादर रख मोहि मन क्रम बचन बिचारो छाओ पई मैं नगरिसह प्रथम नाऊ किशन बिशन कबहु न त्याऊ कान सुने पहचान तिन सौ लिव लागी मोरी पग इन सौ

चारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब साधारो जे को खावे जे को पुंचाए तिसका होए उधारो एह वस्त तजी न जाई नित नित रख और तारो तम संसार चरण लग तरिया सब नानक ब्रह्म पसारो श्लोक महला पंजवा तेरा की दाजा तो नाही मैनू जोग की तोई मैं निर्गुण यारे को गुण नाही आपे तरस पे ओई तरस पिया मेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिलिया नानक नाम मिलाए ता जीवा तन मन थी वह हरिया।

जन्म मरण दुख जाय ऐसे पथ समी नोर अरसाह कुरसाह चटी है दुध दिटे मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह शिर शाह दशाह जिस पास बैठे आसो

गुर चरणी चित लाया फिर पाए अड़ाबा लड़िए अनदिन सहजे माती राम गुरमती मन सहंद पहया तित तन मैल नराती राम तित तन मैल नराती हर प्रभ राती मेरा प्रभ मेल मिलाए

जू है भू है लेखा पेका नाम है काम है ते है पे है जीता पीत है तिर मान है निधान है तिर वर्ग है सरग है नील है ना दे जे है जाद है जन्म है बरण है भूत है भरण है गंज है भांजिया झूजिया झांजिया मीक है पीक है धंद है बंद है निर्बूज है सूज है काल है जल है लाह है जाह है नंत है महंत है अलीक है नरसीक है निर्लभ है सम है गम है जम है भूत है सूत है लोक है सोक है कर्म है भरम है।

नामों का मुस्मस्तो प्रादि स्मस्तस्ता मुतेरा जोर चात्री छंद जले हैं थले हैं पीते हैं पे हैं प्रभु हैं अजू हैं देश हैं पे सैं पुजह प्रयात छंद अगादि अबादि आनंदी स्वरूपे नमो सर्वमान्य समस्त निधने नमस्तवंग नाथे नमस्तवंग प्रमाथे नमस्तवंग अगंजे नमस्तवंग अगपंजे नमस्तवंग अकाले नमस्तवंग उपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो वाह वाह नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोक रोके नमो शोक शोके नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीत नमो सर्वपीत नमो सर्वज्ञान नमो परमतान नमो सर्वमंत्र नमो सर्वजंत्र नमो सर्वदृश नमो सर्वकृष्ण नमो सर्वरंगे त्रिपंगे अनंगे नमो जीव जीव नमो बीज बीजे अखिजे पिजे समस्त प्रसिजे कृपाल स्वरूपे कुकर्म प्रणासी सदा सर्वदंग हृदय सिद्धंग निवासी चरपट छंद प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल तरंगला कर्म सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग बाने सर्वंग प्राण सर्वंग त्राण सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता सर्वंग देवंग सर्वंग भेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले

कृता कृता है धरणी त्रित है अमतेश्वर है परमेश्वर है या कृता कृता मृता मृता है अदबा कृता मृता मृता है नर नायक है खल कायक है विश्वंबर है करुणालय है नृप नायक है सृपायक है पंच।

परमात्म है, सर्व आत्म है, आसम आत्म बस है, जस के जस है, पुजंग प्रयात चंद। नमो सूर्य सूर्य, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो राज संग ताम संग सात रूपे, नमो परम तत्त्वं अतत्त्वं स्वरूपे, नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो

अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न देखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे पुजहं प्रयात छंद नमस्तल प्रणामे समस्तल प्रणासे अगंजल अनामे समस्तल निवासे नकामंग विभूते समस्तल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी स्वधर्मंग विभूते सदा सचदानंद स्तरू प्रणासी करी मुल्क निंदा समस्तल निवासी अजाय विभूते गजाय विगनीमे हरियं करियं करी मुल रहीमे चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्र भुगते सुजियं पहु सुभं सर्वदा सर्व

नमस्कार तिसी को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सवारी, सेवकरों को सब गुण सुख दियो, सतरण को पल मोहबत कियो, कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंतर असूला, सा पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक ही पीर पछाना, कट कट के पट पट की जाना, जबद कर करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपारा, जब या करक करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ, जिते बदन

ग्रंथ करा पूर्ण शुभ राता किलबिक सकल देह को हरता दोष दुखियन को छह करता श्री अस्तो जो जापहि दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांछत फल पावे सोई दुख नत सबे आपत कोई अड़ल सुनै गोंग।

जानते सब तुद उपाय एक वेक प्रश्न आया। लाभ लोभ अहंकार चुका सतगुरु भला पाया, कह नानक जिसनु आप तुठा तिन अमृत गुर ते पाया।

हृदय तनसमणि पीबहो अमृत सदा दाहो हर रंग जपे हो सारंग पाणी कह नानक सदा गावो एह सच्ची बाणी सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी बाणी ता कच्ची सतगुरु बाज हो होर कच्ची बाणी कह

पाए हरस पाए पल पिए हरस बहुना तृष्णा लग आए एहो हरस करमी पाइए सतगुरु मिलज से आए कह नानक होर अनरस सब विसरे जा हर वसै मन आए ए शरीर मेरे हर तुम मैं जोत रखी तां तू जग मह आया हर जो

ना मर लगे ना जले ना जाए धन सुमन से नानक जुगल चले पाए चौकड़ मुलाना आया बे चौके पाया सिखा कन चढ़ाया गुरु ब्राह्मण थे।

थोड़ी साहेब है दयाल, कृपा करे ता साई कार कराए से। सो सेवक सेवा करे जिसनु हुक्म मनाए से, हुक्म न होवे प्रवान ता खसमै का मैल पाए से। खसमै पावे सो करे मन हो जिन।

पौड़ी चित्ते अंदर सबको वेखन दरी हेठ चलाएदा आपे दे बड़े आया आपे ही गर्म कराएदा वडो वडा वड मेदनी सरै सर धंधे लाएदा

पौड़ी अपेहि करना कियो कला पेहि ते तारी है देखे कीता अपना धर कची पक्की सारी है जो आया सो चालसी सब कोई आई वारी है जिसके जी प्राण है क्यों साहेब मन में सारी है।

0: इतनी सेवा प्रवान करनी जी, आओ हूँ लड़ीवार शब्द विचार सुनिए सत्कार योग ज्ञानी दर्शन सिंह जी होरां पासों। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: वाहिगुरु जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, पावै त्यों राख लै हम सरण प्रभाए राम राजे, हम फूल बिगाड़ा दिन सरात

सुख ज्ञान सुख सहज दया का पोता हर भगता हवाला होता। पहलिया तुका ने फेरे दा घाटा नहीं आउंदा, तोटा कदे नहीं आउंदा। इस नाम रूप धन दा ए खजाने दा, दुनिया दे खजाने शाहूकारां दे कोल जमा पूंजी जेड़ी हुंदी है वह किसे वेले तोट आ जांदी है। बैंकां दा भी दिवाला निकल जांदा है, लेकिन वाहिगुरु दे नाम दा खजाना जेड़ा इहदी कोई तोट नहीं आउंदी है। ये उन्ना वादा है जिन्ना खर्च दे ने भगत जन, उन्ना दुनिया च फैलदा है। गुरमुख बनदे ने वो गां दूजियां नूं जपाउंदे ने। ऐसियां बरकतां ने रतन जवे हर नाम, वाहिगुरु दा नाम ही जो अमोलक रतन है।